ਚਾਹੇ ਮਨ ਭਉ ਕਰਿਆ। ਉੜੇ ਉੜਾਵੇ ਸਹਿ ਕੋਸਾ ਤੇ ਪਾਸੇ ਬਹਰੇ ਸਰਿਆ, ਤਿਨ ਕਵਣ ਖਲਾਵੈ ਕਵਣ ਜਗਾਵੈ ਮਨ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ। ਸਮਨ ਦਾਨ ਦਾ ਸਸਦਾਨ ਠਾਕੁਰ ਕਰਤਵ ਤਰਿਆ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਲ ਬਲ ਸਦ ਬਲ ਜਾਈਐ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾਵਰਿਆ। ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ। ਸੋ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਸੋ ਪੁਰਖ ਨਰਜਣਾਰ ਪੁਨਰਣ ਗੰਮਾ ਗੰਮ ਪਾਰਾ, ਸਭ ਧਿਆਵੇਂ ਸਭ ਧਿਆਵੇਂ ਤੋਜੀ ਹਰ ਸਚੈ ਸਿਜਣਹਾਰਾ। ਸਭ ਜੀ ਤੁਮਾਰੇ ਜੀ ਤੂੰ ਜੀਆਂ ਕਾ ਦਾ ਤਾਰਾ, ਹਰ ਦਿਆ ਵੋ ਸੰਤੋ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਸਾਰਨ ਹਾਰਾ। ਹਰ ਆਪੇ ਠਾਕੁਰ ਹਰ ਆਪੇ ਸੇਵਕ ਜੀ ਕਿਆ ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਵਿਚਾਰਾ, ਤੂੰ ਗੜ ਗੜ ਅੰਤਰ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਜੀ ਹਰੇ ਕੋ ਪੁਰਖ ਸਮਾਣਾ, ਇੱਕ ਦਾਤੇ ਇੱਕ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ ਸਭ ਤੇਰੇ ਚੋਜ ਵਡਾਣਾ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਦਾਤਾ ਆਪੇ ਭੁਗਤਾ ਜੀ ਹਉ ਤੁਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਬੇਅੰਤ ਬਿਆਨਜੀ ਤੇਰੇ ਕਿਆ ਗੁਣ ਆ ਵਖਾਣਾ। ਜੋ ਸੇਵੈ ਤੋ ਜੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕਰਬਾਣਾ, ਹਰ ਧਿਆਵੇ ਹਰ ਧਿਆਵੇ ਤੋ ਜੀ ਸੇ ਜਨ ਜੁਗ ਮੈਂ ਸੋਵਾਸੀ। ਸਹਿ ਮੋਹ ਸਹਿ ਮੋਹਤ ਭੈ ਜਿਨ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਜੀ, ਤਿਨ ਤੁਟੀ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸੀ। ਜਿਨ ਨਿਰਭਉ ਜਿਨ ਹਰ ਨਿਰਭਉ ਧਿਆਇਆ ਜੀ, ਤਿਨ ਕਾ ਭਉ ਸਭ ਗਵਾਸੀ। ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਮੇਰਾ ਹਰ ਜੀ, ਤੇ ਹਰ ਰੂਹ ਸਮਾਸੀ। ਸੇ ਧਨ ਜਿਨ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਜੀ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਬਲ ਜਾਸੀ। ਤੇਰੀ ਭਗਤ ਤੇਰੀ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਜੀ ਪਰੇ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤਾ, ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਤੇਰੇ ਪਾਸਲਾਹ ਤੋ ਜੀ ਅਨਕ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤਾ। ਤੇਰੇ ਅਨਕ ਤਿਨ ਕਰੇ ਹਰ ਪੂਜਾ ਜੀ, ਤਪ ਤਾਪੇ ਜਵੇ ਬੇਅੰਤਾ। ਤੇਰੇ ਅਨੇਕ ਪੜੇ ਬਹੁ ਸਿਮਰ ਸਾਹ ਜੀ, ਕਰ ਕਿਰਿਆ ਖੱਟ ਕਰਮ ਕਰੰਤਾ। ਸੇ ਭਗਤ ਸੇ ਭਗਤ ਭਲੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਜੋ ਭਾਵੇ ਮੇਰੇ ਹਰ ਭਗਵੰਤਾ। ਤੂੰ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਪਰੰਪਰ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਤੂੰ ਜੇਵੜਾ ਵਰਨਾ ਕੋਈ। ਤੂੰ ਜੋ ਜੋ ਏਕੋ ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੂੰ ਏਕੋ ਜੀ, ਤੂੰ ਨਿਚਲ ਕਰਤਾ ਸੋਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਪੇ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਵਰਤੇ ਜੀ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰੇ ਸੋਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਪੇ ਸੇ ਸਭ ਉਪਾਈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪੇ ਸੇ ਸਭ ਗੋਈ। ਜਾਨਾ ਨੇ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਕਰਤੇ ਕਹੇ ਜੀ, ਜੋ ਸਭ ਸੇ ਕਾ ਜਾਣੂ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ। ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਸਚਿਆਰ ਮੈਡਾ ਸਾਈ, ਜੋ ਤੂੰ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਥੀ ਸੀ, ਜੋ ਤੂੰ ਦੇ ਸੋਈ ਉਹ ਪਾਵੀ ਰਹਾਉ। ਸਭ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਸਭਨੀ ਧਿਆਇਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤੇ ਨਾਮ ਰਤਨ ਪਾਇਆ। ਗੁਰਮਹਲਾ ਦਮਨ ਮੋਗਵਾਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪ ਵਿਛੋੜਿਆ ਆਪ ਮਲਾਇਆ। ਤੂੰ ਦਰਿਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਜੀ ਮਾਏ, ਤੋਏ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਾਏ। ਜੇ ਜੰਦ ਸਭ ਤੇਰਾ ਖੇਲ, ਵਿਜੋਗ ਮਿਲ ਵਿਛੜਿਆ ਸੰਜੋਗੀ ਮੇਲ। ਜਿਸਨੂੰ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਏ ਸੋਈ ਜਨ ਜਾਣੇ, ਹਰ ਗੁਣ ਸਾਦੀ ਆਪ ਖਾਣੇ। ਜਿਨ ਹਰ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਸੋ ਪਾਇਆ, ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਇਆ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਸਭ ਹੋਏ, ਤੁਰ ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਵਰਨਾ ਕੋਏ। ਤੂੰ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੇ ਜਾਣੇ ਸੋਏ, ਜਾਂ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮ ਪਰਟੋਏ। ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਤਿਤ ਸਰਲੇ ਭੈਲੇ ਨੂੰ ਆਸਾ ਪਾਣੀ ਪਾਵ ਤਿੰਨੇ ਕੀਆ। ਪੰਗ ਜਮੋ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਚਾਲੇ, ਹਮ ਦੇਖਾ ਤੈਂ ਡੂਬੇ ਅਲੇ। ਮਾਰੇਗ ਨ ਚੇ ਸਮੂੜ ਮੰਦਾ, ਹਰ ਬਿਸ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲਿਆ। ਰਹਾਓ ਨਾ ਹੋ ਜਸਤੀ ਨੀ ਪੜਿਆ, ਮੂਰਖ ਮੂਹ ਦਾ ਜਨਮ ਭਿਆ।
प्रणवत नानक तिनकी शरणा, जिन तो नाही विसरिया। आसा महला पंजवा। पई प्राप्त मनुख देहुरिया, गोबिंद मिलन किए तेरी बरिया, अवर काज तेरे किते ना काम, मिल साध संगत भज के वलनाम, सरंजाम ला पहु जल तरन कै, जन्म बिरथा जात रंग माया के रहाओ, जाप तप सजम धर्म ना कमाया, सेवा साधना जान्या हर राया, कहो नानक हम नीच करमा, शरण परे की राखो शर्मा। पातशाही दसवीं कव्यो आज बेनती चौपाई, हमरी करो हाथ दर रक्षा, पूर्ण होए चित की इच्छा, तब चरण मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतपारा, हमरे दो सवे तुम कावो, आप हाथ दे मोरे बचावो, सोही बसे मोरो परवारा, सेवक से सभ्य करतारा, मोर अच्छा निज कर दे करिए, सबैरन को आज सुंगरिए, पूर्ण होए हमारी आसा, तोर भजन की रहे प्यासा, तुम्हें शाड कोई अवर ना त्याऊं, जो बार चाहूं सुब ते पाऊं, सेवक सेख हमारे तारी है, चुन चुन सतर हमारे मारी है, आप हाथ दे मुझे अबरी है, मरन काल का त्रास नवरी है, हो जो सदा हमारे पच्छा, सिरिया तो जो करी हो रच्छा, राह लियो मोए राखण हारे, साहिब संत सहाये प्यारे, दीन बंधुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुरदास कंता, काल पाए ब्रह्म भवतरा, काल पाए शिव जीव अवतरा, काल पाए कर में प्रकाशा, सगल काल का किया तमाशा, जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा ज्योतियो, जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है तन हमारा, जवन काल सब जगत बनायो, देव दया जशन अपजायो, आदि अंत कै अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा, नमस्कार तिसी को हमारी, सर पर जाज ने आप सवारी, सेवकन गो सेव गुण सुख दियो, सतरन को पल मुंबद कियो, खड़गड़ के अंतर की जानत, पले बुरे की पीर पिशान, चीटी ते कुंजरे अस्तूला, सापर कृपा दृष्ट कर फूला, संतन दुख पाए ते दुखी, सो पाए साधन के सुखी, एक एक ही पीर पिछाने, खड़खड़ के पढ़ पढ़ की जाने, जाबुद कर करां करतारा, पजा तरतव दे अपारा, जाबा कर करत हो कब हूं, तुम्हें मिलत दे तर सब हूं, जेते बन से सब तारे, आप अपनी बूझ उचारे, तुम सब ही ते रैत निरालम, जानो बे भेद रियालम, निरंकार निर्विकार निर्लंब, आद नील नाद संभ, ताका मूड़ चात पेदा, जाको पे न पावत बेदा, ताको कृपा हनुन मानत, महामूड कह पे न जानत, महादेव को कह सदाश, निरंकार का चीनत न भेव, आप अपनी बुद्ध है जेती, बनत पिन पिन तो है तेती, तुमरा लगा न जाए पसारा, केह बैसा प्रथम संसारा, के कह रूपानुप स्वरूपा,
रंग प्यो राव कहीं पूपा अंडा जे रसे तज कीने उत्पोज खान बहोर रच दीनी कहूं बूरा जाहूं बैठा कहूं सिम प्यो संगर कैठा सगरी से दिखाए चंभव आद जगा श्रू से अंभव अब रचा मेरी तुम करो सिख अबार सिख संगरो दो जिते उठ तो पाता सकल मलेश करो रणगाता जया तू सब सरणी परे तिनके दुष्ट दूत है मरे पुरख जवन बापरे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो काल को एक बार ते आए हैं ताके काल निकट नहीं आए हैं रचा होए ताए सब काला दोष्टरे टरे तद काला कृपा दे तन जाए न हर हो ताके ताव तनग में हर हो हरिद सिद्ध कर्म सब होई दोष ऐसा सके न कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल वाते ताए उबारा जिन नर नाम त्यार हो कहा दारद दुष्ट दो तेरा खड़ग के तमें शरण तिहारी आप हाद लियो बारी सर्व ठोर मोहो सुहाई दुष्ट दो ते लियो बचाई सवैया पाएंगे जब ते तुम रे तब ते कुआ तरे नहीं आने राम रीम पुराण कुरान ने कहे मत एक न माने सिमरत शास्त्र बेसब बहुपेद के हम एक न जाने श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं न कहो सब तो बखाने दोहेरा सगल द्वार को शाड के गेहो त्वार द्वार बाहे गए की लाज अस गोविंदास तुहार राम कली महला तीजा आनंद क्यों ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद प्या मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर तम पाया सहज सेती मन वजियां बधाइया राग रतन परवार परियां शब्द गावने आईया शब्दो तां गावो हरि केरा मन जनी वसाया कहे नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर ना रहो तू मन मेरे दुख सावे सारना अंगीकारो करे तेरा कार सब सवारना सब न गल्ला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे कहे नानक मन मेरे सदा रो हर नाले साचे साहिबा क्या नाही कार तेरे करता तेरे सब किश है जे दे सो पावे सदा सिसला तेरी नाम मन वसावे नाम जिनके मन वसया वाजे शब्द घनेरे कहे नानक सच्चे साहिब क्या नाही कार तेरे साचा नाम मेरा यादारो साच नाम धार मेरा जिन पुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन आए वसया जिन इशां सब पुजाइया सदा गुरबान कीता गुरु विटो जे दिया वड़ियाइया कह नानक सुनो संतो शब तरो प्यारो साचा नाम मेरा यादारो वाजे पान शब्द कर सुभागे कर सुभागे शब्द वाजे कला जित कर तारिया पंज दो तुद वस कीते काल कंटक मारिया तुर करम पाया तो जिन को से नाम हर के लागे कहे नान ते सुखुआ तित कार्या न हद वाजे
आनंद सुनो वड भागियो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म पाया उतरे सगल वसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन पै स्वर से पूरे गुरु थे जानी सुनते पनीत कहते पवित सतगुर आपर पूरे बिनवंत नान गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे सुनते पनीत कहते पवित सतगुर आपर पूरे बिनवंत नान गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे मदावनी महला पंजवा थाल वितन वस्तु पइयो सत संतोह विचारो अमृत नाम ठाकर का पयो जिसका सब सदारो जे को खावे जे को पहुंचे तिसका हो अदारो एह वस्तई न जाई नेतन राखुर तारो तम संसार चरण लगतरी सब नान ब्रह्म प्रसारो श्लोक महला पंजवा तेरा कीता जा तो नाही मैनो जो कितो मैं निर्गुण आरे को गुण नाही आपे तरस पियोई तरस पिया मैं रामत होई सतगुर सजन मिलिया नानक नाम मिले ता जीवा तन मन थीवे हरिया तरस पिया मैं रामत हो सतगुर सजन मिलिया नानक नाम मिले ता जीवा तन मन थीवे हरिया वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

संत माधोदास गुरु साहब तो खेमा जाचना मंगदा कहना कृपा करके मैं अपना सिख बना लियो। इस तो अगे का इतिहास कल दे दवाना च पेश करांगे। गुरु साहब के इतिहास उच्चे तो सुचे बोलदियां तो गलतियां हो ही जांदियां। गुरु साहब ते गुरु दी संगत बख्शण योग है। ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਸੀਸ ਬਖਸ਼ੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।

Tanrı ve Ruh Sahibi दर्शन प्यासी दिन रात चितवों अंदर नीत खोल कपाट गुर मेलिया नानक हर संग मीत जिस प्यारे सिने तेसे आ गए मर चलिए त्रिग जीवन संसार ताक पाछे जीवना धन वाहगुरु साहब जी। श्लोक महला दूजा कैसे ही कोई कोए मान्य निमाणी एक तू क्यों ना मरी जय रोए जा लग चेतना आवही कैसे ही कोई कोए मान्य निमाणी एक तू क्यों ना मरी जय रोए

जिसे कृपाल होए मेरा स्वामी पूर्णता को काम। जाकर देव से पै भंजन तिस जाने सगल जहान, खेन पाल बिसर नहीं मेरे करते ए नानक मांगे दान। सारंग महला पंजवा। वठा सर्व थाई में आनंद मंगल गाओ, हर जस पूर्ण प्रगट्यो ने रहाओ। चार कुंट दह दिश चल निद ऊन थाओ नाके, कृपा निद गोबिंद पूरण जी दान सबदे। सात सात हर सात स्वामी सात साध संगे, सात ते जान जिन प्रतीत उपजी, नानक न परमे। सारंग महला पंजवा। गोबिंद जियो तू मेरे प्राण आधार, साजन मीत सहाई तुम ही तू मेरो परवार। रहाओ कार मस्तक धार्यो मेरे माथे, साध संग गुण गाए तुमरी कृपा ते सब फल पाए। रसक राम नाम ते आए, अब चल नीम तराई सतगुर कबहू डोलत नाही, गुरु नानक जपे दयारा सर्व सुखा निद पाई। सारंग महला पंजवा। निब ही नाम की सच खेप, लाभ हर गुण गाए निद तन, बिखे माहिया लेप। रहाओ जी जंत सगल संतोखे, अपना प्रभ त्याए, रतन जन्म या पार जीतियो बहुड़ जोन ना पाए। पय कृपाल दयाल गोबिंद, पया साधु संग हर चरण रास नानक पाई, लगा प्रभ स्यों रंग। सारंग महला पंजवा। माई रे पेख रही बिस्माद, अनहद तुनी मेरा मन मोहयो, अचरजता के स्वाद रहाओ।

एक आधार नानक जन किया, बहुर ना चोन प्रमाद, सारंग माला पंजवा। माई री माती चरण समूह, एकस बिनहु आन ना जानो, द्वितीया पाओ सब लूराओ। त्याग गोपाल अवर जो करना, ते बिखिया के खू। दर्श प्यास मेरा मन मोहयो, काटी नरक ते तू। संत प्रसाद मिलियो सुखदाता, बिनसी हो मैं हू। राम रंग राते दास नानक, मौलियो मंतन जू, सारंग माला पंजवा। बिन से काच के व्यवहार, राम भज मिल साध संगत, यह जग मैं सार रहाऊ। ईत ऊत ना डोल कतहु, नाम हृदय तार, गुरचरण बोहित मिलियो भागी, उतरियो संसार। जाल थाल महियल पूर रहयो, सर्ब नाथ अपार। हर नाम अमृत पियो नानक, आन रस सबकार, सारंग महला पंजवा। ताते करण पला करे, महाविकार मोह मद मातो, स्मृत नाय हरे रहाओ। साध संग जपते नारायण, तिनके दुख जरे, सफल दे धन योय जन्मे, प्रभ कै संग रले। चार पदार्थ अष्ट दशा सिद्ध, सभी ऊपर साध पले, नानक दास धूर जन बांछे, उदरै लाग पले, सारंग माला पंजवा। हर के नाम के जन कांखी, मन तन बचन ही सुख चाहत, प्रभु दर्श देखे कबे आखी रहाओ। तुम्बे अंत पार ब्रह्म स्वामी, गत तेरी जाए ना लाखी, चरण कमल प्रीत मन बेदया, कर सर्ब से अंतर राखी। वेद पुराण सिमृत साधु जन, ए बाणी रसना पाखी। जप राम नाम नानक निस्तरिय, होर द्वितीया बिरती साखी, सारंग माला पंजवा।

हर के नाम की मत सार, हर विसार जो आन राचै, मिथन सब विस्तार रहाउ। साध संगम पच स्वामी, पाप होवत खार, चरणार बिंद बसाए हृदय, बहुर जन्म ना मार। कार अनुग्रह राख लीने, एक नाम आधार, दिन रैन समर्थ सदा नानक, मुख्य उज्जल दरबार, सारंग माला पंजवां।

बेखट गौरी खाए मूठो चेतना सृजनहार गोविंद गुप्त हुए रे उन्हें आरु मातांग माते अहंकार।

शुभ वचन बोल गुनिया मोल किंकरी विकार देखरी विचार गुर शब्द ते आए महल पाए हर सांग रंग करती महा केल रहाओ। सुपनरी संसार मिथनी विस्तार सखी काए मोह मोहली प्रे प्रीत हृदय मेल। सर्वरी प्रीत प्यार प्रभ सदारी दयार काए आन आन रुचिय हर संग संग खचिय। जौ साध संग पाए कौ नानक हारते आए अब रहे जमय मेल। सारंग महला पंजवां

चार वेद जे पने दस अष्ट खष्ट श्रवण सुने नहीं तुल गोविंद नाम तने मन चरण कमर लागे। भरत संद सोच चार क्रिया कुंड निराहार अपरस करत पाक सार निवली करम ब विस्तार। धूप दीप करते हर नाम तुल ना लागे राम दयार सुन दीन बेनती देह दर्श नैन पेखों जन नानक नाम मिष्ट लागे।

बिन से प्रम मोहंध टूटे माया के बंध पूर्ण सर्वतर ठाकुर न को बैराई। स्वामी सो प्रसन्न पे जन्म जन्म जन्म मरण दुख गए संतन कै चरण लाग नानक गुण गाई सारंग महला पंजवां।

प्रीत लाए हर त्याए गुण गोबिंद सदा गाए हर जन की रेन बांश दैन हार स्वामी सर्ब कुशल सुख विश्राम आनंदायानंद नाम जमकी कछ नाहि त्रास सिमरे अंतर जामे।

दृष्ट कै संग न जाए, मान त्याग मोहा, एक हर प्रीत लाए, मिल साध संग सोहा।

जानते दयार रहाओ। मातर पितर त्याग कै मन संत पै बेचायो, जात जन्म कुल खोइये हम गाँव हर हरी। लोक कुटुंब ते टूटी है प्रभु किरत किरत करी।

कहाँ को तन तन संपत कहाँ की, कांस्यो नेह लगाई, जो दिसे सो सगल बिनासे, ज्यों बादर की शाही।

ताज अभिमान शरण संतन को मुक्त होए शिन माही। जान नानक भगवंत भजन बिन सुख सुपने पीना ही सारंग माला नावा। कहा नार अपनो जन्म गवावे माया मद बिखिया रस रचियो राम शरण नहीं आवे रहाऊ।

मिथ्या तन साचो कर मान्यो ए विद्याप बंधावे जन नानक सो जन मुक्ता राम भजन चितलावे सारंग महला नावा। मन कर कबहू न हर गुण गायो बिख्या सकत रहो निस बासुर कीनो अपनो पायो रहाओ।

जन्म जन्म के कृप कृपा पंजन गुरमुखे कोटि ठहराव, कोट कुटंतर के पाप विनाशन हर साचा मन पाया, हर बिन अवर ना सूझे दूजा सतगुर एक बजाया। प्रेम पदार्थ जित घट वसिया, सहजे रहे समाई शब्द रते सह रंग चलूले राते सह सपाई, रसना शब्द विचार रस राते लाल पई रंग लाई, राम नाम नह के पर जानिया मन त्रिवत्या शांत आई, पंडित पढ़ पढ़ मोनी मोनी सब थाके भ्रम पेख थके पेख तारी, गुर प्रसाद निरंजन पाया साचे शब्द विचारी, आवा गौण निपार सच राते साच शब्द मन पाया, सतगुर से पा सदा सुख पाईऐ विचो हमे आप गवाया, साचे शब्द सहज तुन उपजै मन साचे लवलाई, अगम अगोचर नाम निरंजन गुरमुख मन वसाई, एक समय सब जग तो वरतै विरला एक पछाणै, शब्द मरे ता सब किस सूझै अनदन एको जाणै, जिसनु नजर करे सोई जन पाए, जिसनु नजर करे सोई जन बुझै, होर कहना कथन न जाय, नानक नाम रते सदार बैरागी एक शब्द लवलाई, सारग महला तीजा मन मेरे हर की अकथ कहानी, हर नजर करे सोई जन पाए गुरमुख बरले जानी रहा, हर गैर गंभीर गुणी गहीर गुर के शब्द पछाणिया, बहुबिद कर्म करे पाए दूजै बिन शब्दे बहुरानिया, हर नाम नापै सोई जन निर्मल फिर मैला मूल न होए, नाम बिना सब जग है मैला दूजे पाए दूजे परम पद खोए, क्या दृढ़ा क्या संग्रह त्यागे मैं ता बूझ न पाई, होहे दयाल कृपा कर हर जियो नामे होए सखाई, सच्चा सच दाता कर्म विदाता जिस भावै तिस नाए लाए, गुरु द्वारे सोई बुझै जिसनु आप बजाए, देख बिस्माद इहो मन नहीं चेतै, आवा गौण संसारा सतगुर सेवे सोई बुझै पाए मुख द्वारा, जिन दर सूझै से कदे न बिगाड़े सतगुर बुझ बजाए, सच संजम करनी किरत कमापे आपन जान रहाए, से दर साचे साज कमावै जिन गुरमुख साचे दारा।

नानक से जन थाए पै है, जिनके पत पाए लिख है, जिनके पत पावे लिख है। सारग महला पंजवा, अष्टपदिया घर पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। गुसाई प्रताप तुहारो डीठा, करण करावन उपाय समापन, सगर प्रास्त बीठा रहा। राणा राव राज पेरंगा, उन झूठो कहन कहायो, हमरा राजन सदा सलामत, ताको सगल घटा जस गायो। उपमा सुनो राजन की संतो, कहत जेत पहुचा, बेसमार बड साहद तारा, ऊचे ही ते ऊचा। पवन परोयो सगल कारा, पावक काष्ट संगे, नीर तरण कर राखे एकत, कोई न किसी संग। काट काट कथा राजन की चाल, कर कर तुझे उमाहा, जी जंत सब पाछे करिया, प्रथमे रिजक समाहा। जो

जाके गृह माए रमत राम पूर्ण सब ठाए अनक माया जाके लखी न जाए अनक कला खेले हर राय अनक तुन अनक संगीत अनक गौत प्रगटत चीत सबते ऊच भक्त जाके संग आठ पहर कुन का फिरंग अनक ऊच निम्र निरपान अपना किया जाने आप आपे घट घट रिहो प्याप कृपा निदान नानक दयाल जिन जपिया नानक ते भय निहार सारग शांत महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद सब देखी अनपे का दाता घट घट पूर्ण है लपाता घट घट पूरण कर बिस्थिरन जात रंग जो रचन किया हब रस माने भोग कटाने आ न पिया को थिया हर रंगी एक रंगी ठाकर सतग सतसंग प्रभ जाता नानक दर्श लीना जो चल मीना सब देखिए अनफे का दाता कौन उपा द्यो कौन बढ़ाई पूर्ण पूर हो सर बठाई पूरण मनमोहन घट घट सोहन जब खिंचे तब शाई क्यों ना अराधो मिल कर साधो करी मोहतक बिलायाई अर्थ दर्ब सब जो किश दिसे संगना कबहू जाय कहो नानक हर हर अराधो कवन उपा देव कवन बढ़ाए पूछो संत मेरो ठाकर कैसा हियो अरापो दियो संदेसा दिहो संदेसा प्रभ जी कैसा कह मोन परवेसा अंग अंग सुखदाई पूर्ण ब्रह्माई थान तनंतर देसा बंधन ते मुक्ता कड़ कड़ जुगता कह न सको हर जैसा देख चरित नानक मन मोहियो पूछे दीन मेर उठा कर कैसा कर कृपा अपने पै आया तन सुरदा जे चरण बसाया चरण बसाया संत संगाया अज्ञान अंधेर कवाया पिया प्रगास हृदय उलास प्रभ लुड़ींदा पाया

कर किरपा अपने पहयाया। सारंगी पार महला चौथा, राय महमे हसने की धुन, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। श्लोक महला दूजा, गुर पूंजी पाहो निवल मन खोटा तन छत, नानक गुरपिन मन का ताक न उगड़ै, अवन कुंजी हाथ महला पहला। ना भीजै राकी नादि बेद, ना भीजै सुरती ज्ञानी जोग, ना भीजै सोगी कीतै रोज, ना भीजै रूपी माली रंग, ना भीजै तीर्थ भवै नंग, ना भीजै दाती कीते पुन, ना भीजै बाहर बैठिया सुन, ना भीजै भेड़ मरे पिड़ सूर, ना भीजै किते होवे धूड़। निस्तन उचरे पार हठार, तन पी अंत न पाया तूहे, ना बिहून मुक्त क्यों होए, नाभ वस्त ब्रह्मे अंत न जानिया, गुरमुख नानक नाम पछाणिया पौड़ी, आपे आप निरंजना जिने आप उपाया, आपे खेल रचायो न सब जगत सबाया, त्रैगुण आप सिरजियां न माया मोह बधाया, गुर प्रसादी उबरे जिन भाणा पाया, नानक सच वरतदा सब सच समाया, नानक सच वरतदा सब सच समाया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

पड़े अपने साजे अपने रचियो नाओ दोहे कुदरत साजिए करा संडिटो चाओ दाता करता आप तू तुझ देवे करे पसाओ तू जाने सब सिद्ध लै सह जिंद गवाओ करे आसन डिठो चाओ करे आसन डिठो चाओ।

समल सबन जिन करता करना किया चिंता पी करनीता सो करता चिंता करे जिन पै जग तिस ज्वार स्वस्थ तिस तिस दिवान पग।

पौड़ी सच्चा साहब एक दुन सचो सच वरताया, जिस तू दे तिस मिले सतनी सच कमाया, सात गुर मिले सच पैजन के हृदय सच वसाया, मूर्ख सच ना जाने।

0: जेते दाड़िया निके जिया बाय न कोई, पहला पानी जियो है जित हरिया सब कोई, सुत क्यों कर रखी है सुत पवर सोए, नानक सुत के उनपरे ज्ञान उतारे तो ए महला पहला।
1: मन का सुत गलोब गए जेवा सुत कूड़ की सुत के विखना।

पौड़ी सबको आके अपना जनाई सोच न कड़ी है किता पो अपना पहले कसंडी है जरणा नहीं है तो जगत का घर भंडी है मंदा किसने पड़ खरे हो बुझी है मूर्ख नाल लुजी है मूर्ख नाल लुजी है।

बोले सो निहाल सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

सतनाम। श्री वाहे गुरु साहिब जी, हम अवगुण परे एक गुण नाहीं, अमृत शाड बिखे बिख खाई, माया मोह परम पै भूले, सुतदा रास्यों प्रीत लगाई।

क्यों न मरी जय रोए, जान लग चित ना आवई। महला दूजा। जान सुख तां शोहरावेओ, दुख भी संभालो ए। नानक कहे सियाणिए, यों कंत मिलावा होए पौड़ी।

जग जन्म मरण पगा एह आई ही है प्रतीत प्रतीत है आई जिन जान कै तिन कौ पदवी उच तज माया मोह लोभ आर लालच काम क्रोध की वृथा गई अवलोके आ ब्रह्म परम सब छुटके आ दिव्य दृष्ट कारण करण सतगुर गुर सेव अलख गत जा की श्री राम दास तारण तरण जे तू तुठा कृपा निधान

सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा तू साहिब गुणी निदाना तुमरी महिमा वर्णन ना सकूं

अमृत शाडू बिखे बिखू खाई, माया मोह परम पै पुले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई।

0: शको भोजन गुरु जी यार जोई मेरिया
1: भुल जामेगा आखिर मन दी मौत मरेगा
0: शको भोजन गुरु जी यार जोई मेरिया
1: भुल जामेगा आखिर मन दी मौत मरेगा
0: शको भोजन गुरु जी यार जोई मेरिया
2: चोर गुरु नानक महारू बेनती करता कि मेरे ग्रह विखे आओ मैं थोनू सेवा करूं भोजन छकाऊंगा इन्ना कुछ कहते खेवे जा चुका है इस अगे इतिहास कल दुआने सरबण करावे गुरु साहब के इतिहास बोलदों तो गलतियां हो जाएं गुरु साहब तो गुरु की संगत बख्शन योग है अणजाण बच्चे समझ के खिमा करो बेंत संगतान ने माया रूपी शीस बख्शी है गुरु साहब सारा चढ़ती कला घर परिवार में सुख शांति बख्शिश कर बुलाओ फतेह आखो जी वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।
3: धन्यवाद सत्कार योग भाई गुरप्रीत सिंह जी बदनी वाले ढाडी जथे का जो आप संगत ढाडी कला के विचारा इतिहास की सांझ कर रहे सन। यह जत्था रोजाना ही शेर शाम के दीवाना में आप संगत इतिहास श्रवण करवाता है हाजरियां भर के लाहे प्राप्त करया करो जी। हर मंगलवार की तरह समूह सेवादार बीबिया वालों श्री सुखमणी साहब जी के पाठ से गुरबाणी कीर्तन के प्रवाह चलते हैं जो कि आरंभ होने लगे हैं 11:30 तो लैके 1:30 बजे तक उपरंत दीवाना की समाप्ति होगी। सो आप संगत ने बड़े प्रेम अदब सत्कार सहित बैठ के समूह सेवादार बीबिया पासों श्री सुखमणी साहब जी के पाठ से गुरबाणी कीर्तन श्रवण करन की कृपालता करनी जी। भुला चुका देखिवा आप संगत का धन्यवाद वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।
4: सतनाम श्री वाहेगुरु जी सतनाम वाहेगुरु जी दंडौत बंधन अनकवार सर्व कला समरथ डोलन तेरा खो प्रभु नानक दे कर हाथ दीन दर्द दुख पंजना कट कट नाथ

चित में मेरा सब दुख गवाए जियो। सो कह टल गुर सेविए एहन ससहज सुपाए, दर्शन परसिए गुरु के जानम।

जय मात पिता सतमीत न पाई, मनुहा नाम तेरे संग सहाई। जय मुश्किल हो वे अत भारी, हर को नाम खिन माहे उधारी। गुरमुख नाम जपो मन मेरे, नानक पाप हो चूक।

जय मार गयो जात केला ते हर नाम संगोत सुहेला छूटत नहीं कोट लखवाही नाम जपत तह पार पराही।

ऐसा नाम जपो मन रंग, नानक पाया साधके संग। जय पेंगे मान दगवारा, हर का नाम संगी उजियारा। जय मां प्यान तब तो बह काम, ते हर के नाम की तुम ऊपर शाम। भक्त जना की बर्तन नाम, संत जना के मन विश्राम। हर जस करत संत दिन रात, हर हर औखद साध कमात।

हर का नाम जानकार ऊपर अंग, हर नाम जप्त का परे न पंग। हर का नाम जान को भोग जोग, हर नाम जप्त कछ नाहीं बियोग।

अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान है खर शास्त्र सिमरत पखियान अनक प्रकार किए बो जतना पन दान हो में बो रतना नहीं तो राम नाम विचार नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार अगन माहे ओमत प्राण कनक असव है भर पूम दान निम्ख निम्ख कर श्री

अरे नानक राखन हारे अपार जो छड़ना सो अस्थिर कर माने जो हो वन सो दूर पराने चंदन ले पोतारे तोए गर्त प्रीत पसम संग होए करतूत पशु की मानस जात लोक पुचारा करे दिन रात बाहर ज्ञान ध्यान स्नान अंतर व्यापे लोभ स्वाम जाके अंतर बसे प्रव्याप नानक ते जन सहज समात कह बुजारत बूझे डोरा निस्कहिए तो समझे पूरा कह पिंगल पर्वत पर पवन नहीं हो तू आउस गवन संग सहाई सुहावे नचीत जो बेराई तसो प्रीत दृढ़ कर माने मने प्रतीत काल न आवे मूढ़े चीत याहू जुगत बिहाने कई जन्म नानक राख ले हो अपन कर कर्म तुम मात पिता हम

राष्ट्रपति दसवा तूले पाछे पावे एक वस्त कारण खोट गवावे जिष्ठा करस्यो नाही चारा ताको की जय सद नाम सकारा जिस दिन अपना हुक्म मनाया सर्व थोक नानक तिन पाया अपनी अमान कछ बाहर सावले।

0: अनक पात माया के हेत सर पर होवत जाना नेत
1: छाया सो रंग लावे ओ बिन सेवा मन पछतावे
0: जो दी सो चा

मिथ्या चरण पर विकार कोता वे मिथ्या मन पर लो लोवा वे बैन बूझे मिथ्या सपे सफल दे नानक हारा नाम ले व्यर्था नाम बिना तनि अंध मुखावता के

जो तुम पाने तिन प्रभ जाता नानक उंजन चरण पराता। आपे आप करत नवेरा किसे दूर जनावत किसे बिजावत नेरा। जिस पावे तिस लै लड़ लाए।

है आष्टपदी। जय प्रसाद छती अमृत खाहे, तिस ठाकर को रख मन माहे। जय प्रसाद बसे सुख मंदर, तिसे त्याए सदा मनी अंदर। जय प्रसाद रंग रस भोग, नानक सदा त्याए त्यावन जोग। जय प्रसाद सुख से सोई जय, मन आठ पैर ता का जस गावी जय। जय प्रसाद तेरो रहता धर्म, मन सदा त्याए केवल पार ब्रह्म। जय प्रसाद रोग कंचन देही, लिव लाभ हो तिस राम स्नेही। जय प्रसाद तेरे सगल छिद्र ढाके, मनसा नी पर ठाकर प्राप्त आके। जय प्रसाद पाई इधर लाभ देहे, नानक ताकी भक्त करे। जय प्रसाद आसवा

उठत बैठ सत से त्याई जे प्रसाद करे पुन बोधान मन आठ पैर कर तिसका ध्यान जे प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभु सिमरो सदा अनूप जे प्रसाद तेरी पत्र है गुर प्रसाद नानक जस कह है जय प्रसाद बोले अमृत रसना जय प्रसाद सुख जय दे बसना जय प्रसाद परम गत पावे जय प्रसाद सुख चै जस मावे जय प्रसाद तू प्रगट संसार तिस प्राप का मूल न मनो विसार जय प्रसाद तेरे कार्य पूरे तैसे जान मन सदा हजूरे जय प्रसाद साहब

साध के संग में खुजल होत, साध संग में सगली खोत। साध के संग बुझे प्रभ नेरा, साध संग सब होत नवेरा।

0: साध के संग नाही को मंदा, साध संग जाने परमानंदा। आपे जाने साध बढ़ाई, नानक साध प्रभु बनियाई। साध संग बस्तर गोचर ले है, साधु के संग अजर सह। साध के संग दृढ़ सब धर्म, साध के संग केवल पार ब्रह्म।
1: साध के संग पाए नाम निदान, नानक साधु के कुर्बान।
0: साध के संग सब को ले उधार, साध संग साजन मीत कुटुंब निस्तार।
1: साधु के संग सो तन पावे, जिस तन ते सब को बरसावे।
0: साध संग धर्म राय करे सेवा, साध के संग शोभा सुर देवा।
1: साधु के संग पाप लाइन,
0: साध के संग सर्व थान गम। नानक साध के संग सफल जन्म। साध के संग कलुखत हरे, साध के संग नरक पर हरे। जो इच्छे सोई फल पावे, साध के संग न बिरथा जावे। साध के संग सुनो हर नाओ, साध संग हर के गुण गाओ।

नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान ब्रह्म ज्ञानी के गरीबी समाहा ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार महा ब्रह्म ज्ञानी के होए सो भला ब्रह्म ज्ञानी सो फल फला।

0: ब्रह्मज्ञानी का निर्मल मंत्र,
1: ब्रह्मज्ञानी जिस करे प्रलाप, ब्रह्मज्ञानी का बट प्रताप,
0: ब्रह्मज्ञानी का दर्श बट भागी पाइय, ब्रह्मज्ञानी को बल बल जाइय,
1: ब्रह्मज्ञानी को खोजे में ईश्वर, ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर,
0: ब्रह्मज्ञानी की

नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार। ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूरन पर्ख विधाता, ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार।

0: कोटम देखो ऐसा प्रस
1: वैष्णो सोच सुपर सो प्रसन्न विष्णु की माया पे और पहना
0: कर्म कर तो वे न कर्म तिस वैष्णो का निर्मल धर्म
1: आहु फल की इच्छा नहीं बाचे केवल भक्त की तन संग रचे
0: मन तन अंतर सिमरन गोपाल सब ऊपर होवत कृपाल
1: आप दृढ़ और नाम जपावे नानको वैष्णो परम गत पावे
0: भगवती भगवंत भगत का रंग

कई कोट किरपन कठोर कई कोट पिघातम निकोर कई कोट माया सर माहे कई कोट परदेश पर माहे।

0: की रास, कट कट पूरन ब्रह्म प्रगास।
1: अपनी पंचा बनाई नाटक जीवे देख बढ़ाई,
0: इसका बाल नहीं इस हाथ, कर्ण करावन सर्व को नाथ। कबू ऊंच नीच मैं बसे, कबू सोग हरख रंग हसे, कबू बेता ब्रह्म विचार, नानक आ मलावन हार। कबू महाक्रोध विकराल, कबू सर्व के हो।

0: कबू ए पंडित करे बखियान, कबू मुँह तारी लावे ध्यान, कबू कीट हस्त पतंग है जिया, अनेक जोन परमे परमिया,
1: नाना रूप जो स्वादी दिखावे, जो प्रभावे तिवें नचावे,
0: जो तिस पावे सोई।

0: सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए नानक बिघन न लागे कोए।
1: सत मन में कर निरंकार कर मन मेरे सत व्यवहार
0: निर्मल रसना।

संग लपट रियो रस लोभी पतंग जिस बखर को लैन तू आया राम नाम संतन कर पाया लाल खेब संत

0: जो जो होए सोई सुख माने कन करावन हार प्रभ जाने
1: अंतर बसे बार पियोई नानक दर्शन दे सब होई
0: आप सत किया सब सत तिस प्रभ ते सगली उत्पत कला लखी न जाए जिस भावे से ले मिलाए
1: दूर आपे आपा भरपूर
0: अंतर्गत जिसे आप जनाए।